गंभीर प्रकृति का राग है। विलक दी आत्मा कृपा दी जाचना करती है, आपे दी खोज करती है। इसलिए इस राग विच गुरु साहबान ने मन, मत, बुद्धि, आत्मा, मौत, मुक्ति आदि गंभीर विषयों विच गुरबाणी उच्चारण की। श्री गुरु ग्रंथ साहब विच सब तो वध बाणी इसे ही राग विच है। सुखमनी साहिब अते बावन अखरी जीवन दे सारे ही मतां दा तत दर्शाउंदियां हन। भगत कबीर जी दी सब तो वध बाणी इसे राग विच है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दा फरमान है, गौड़ी राग सुलखणी जे खसमै चित करे, पाणे चले सतगुरु कै ऐसा सिंगार करे। गौड़ी दियां 12 वनगियां श्री गुरु ग्रंथ साहब जी विच हन। जो दो शब्द हुण आप सरवण करोगे उन्हां विच गौड़ी दे जो सुर लगाए गए हन वो हन ऋषभ अते धैवत कोमल अते बाकी सारे शुद्ध स्वर। गायन समा राग दा प्रथम पहर। पहला शब्द सरवण करो भाई गुरदेव सिंह खालसा जी पासों। शब्द दे बोल हन, गौड़ी राग सुलखणी जे खसमै चित करे। दूजा शब्द है प्रोफेसर हरचंद सिंह जी दा गाया होया। बोल हन, थिर कर बैसहु हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे। पहला शब्द गौड़ी राग सुलखणी जे खसमै चित करे।

0: अपने दास को बैल सहाई सगल मनोरथ कीने करते ऊनी बात न आई करते पुरख।
1: You are listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around

भाई जोग आश्रम में पहुंचे, हजूर ने दो रोई तक देखे प्यारी सास संग तुम्हें जिस सिख तू बगैर मेरा काम नहीं सी ना चलता, वो भाई जोगा सिंह आ गया। आ जा जोगिया साढ़े कोल आ जा। भाई जोगा सिंह सुन के बड़ा हैरान, मैं तो समझिया सी कि गुरु साहब मेनू जोड़िया च खड़ा करनगे, पर ए तो प्यार नाल पै बुलांदे। भाई जोगा सिंह साहबां दे कोल पहुंचे, जोगा सिंह भाई आखा जी आया, सोना सिख तू है सरदार बीबा, घर मार परिवार नू छड़ के ते साडे नाल ते कीता प्यार बीबा। भाई जोगा सिंह सोचन मन, मैं ता समझिया सी गुरु अंतर जामी, जे अंतर जामी होंदा ता हुशियारपुर दी करतूत नू जानदा, जे हुशियारपुर दी करतूत नू जानदा होंदा ता मेनू सजा दे, पर गुरु तो मेनू प्यार पिया कर। जे गुरु अंतर जामी, जे गुरु इथों दिया नहीं जानदा तो मेरी दरगाह किवें बां फड़ेगा, 12 साल एवें गुरु की सेवा की। आखो सेवा अंतर जामी सतगुरु सोचन लग, सिख नू काम दे कुंड विचों कढ़िया है, हुण अशरदक दे खाते च पिया पैंदा, गुरु नू पता है शरदा तू हीण पिया होंदे। हजूर ने कहा जोगे आ मेरे वल तक। भाई जोगा सिंह ने तके आ, इतना नूर सी साहबा ने चेहरे ते नजरा नीवियां। हजूर ने फिर किया जोगे आ मेरे वल क्यों नहीं देंदा, तकदा है फिर खा। तीजी वेरी जिस वेले साहबा ने किया जोगे आ मेरे वल तक, भाई जोगा सिंह ने जिस वेले कलगीधर पातशाह वल तक, भाई जोगा सिंह हैरान हो गया, कंबन लग गया कि तकदा है कि श्री आनंदपुर साहब दे सोने तख्ते बहन वाला ते राती वेसवा दे चवारे ते पहरा देण वाला इको ही है। दोवे हजर रो पिया भाई जोगा सिंह, अच्छा मैं पापी हां मेनू बख्श, पर मेरा जेड़ा पोल है संगत च ना खोलो। आखो श्री भाई अगे पिछे सजा दे लिया, जे संगत बोलना। हजूर कहन लगे जो गया मैं ता तेरी करतूत नू वेख के अडिठ पिया करदा, पर तू कहन लगा तेरे मन च फुरना बढ़िया कि गुरु नू पता ही कोई नहीं, मैं ता सब कोई जा हर अंतर जामी जाने बिन बोलत आप, ते तू कहने गुरु नू पता नहीं। तो भाई जोगा सिंह कहने लगा महाराज ए भी चंगा होया, आज पता लग गया है कि तू अपने सिख दी रखिया कर। कलगीधर पातशाह जी कहने लगे एदा मतलब भाई जोगा सिंह तो मेनू अजमाया है, मेरी अजमायश की थी है। भाई जोगा सिंह चुप कर गया ते माद गुजरी दे लाल दे सामने तकिया ते क्या जो गया मैनू अगे भी सिखा ने बड़ा अजमाया पर मैं इम्तिहान च पूरा अजमायश पूरा पहले जामे सिख ने अजमाया बाबर दी जेल च अरदास की थी, मैं उथे पहुंच के ते बाबर दी चक्कियां पीटी। पंजे जामे च दिल्ली दी संगत ने अजमाया के चंदू हंकारी दा नाता नहीं लै, तो जो गया मैं संगता दा हुक्म सिर मत्थे रखे, जे मैं कुड़माचारी दी असीत च चंदू दे घर जांदा चंदू मेरे ते फुल्लां दी वर्षा करदा, पर मैं अपने सिखां दा हुक्म मर के जिसले चंदू दे घर गया तां चंदू ने मेरे ते सड़दी बंदी रेत पाई, पर मैं अजमाइश पूरा विधि चंद ने मेनू अजमाया छेवे दुशाले लैके भजा जाता है पिछे बादशाह की फौज आ। विधि चंद ने छेवे पातशाह का ध्यान करके पठियारी दे बलदे पठ में छाल मार। हजूर कीर्तपुर बैठे सिखो बड़ी गर्मी हो रही है जल लियाओ, छेवे पातशाह जी दे शरीर ते जिस वेले जल पाया सिंघा ने तकिया हैरान हो गए कि साहबां दे सारे शरीर ते छाले छाले हो। अधूर कहन लगे जो गया फिर बिनी चंद नू तत्ती वारी लगन दिती
ਉਹ ਸਾਰੀ ਗਰਮੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਈ। ਪਰ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਅਜ਼ਮਾਇਆ? ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨੇਤਰ ਸਜਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਜੇ ਸਾਈ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਬੇਸ਼ੱਕ।

0: बादशाह मेनू बख्श। मैं भूल गया, हजूर कहन लगे जो गया रोई जा उतने तक जितने तक तेरे अंदरों हौमे अखा थानी पानी बन के बाहर नहीं निकलती। रोई जो गया तो मेरी अजमाइश की, तू तो ए भी कहन लग गया कि गुरु नु पता ही कोई नहीं। भूल गया रो रो के ताई जोगा सिख दा मन हौला फुल हो गया। अदू कहन लगे जोगिया भूल गए हां पातशाह, कलगीधर पातशाह जी कहन लगे जोगिया जी भूल गए ता जा तेरू बख्शिया आखो श्री राम। बस गल तो इतनी, भूल कर लेनी ए इंसानी फर्ज, पर जे भूल
1: असी प्यार नाल पढ़ो।

0: इतिहास लिखे प्यारी सास संगत भाई गंगा सिंह ने दो नामा लिया थे दो नहीं।
1: You are listening to SikhNet Geo, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.

चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुजम्भम सुमन सर्वदा सर्व जुगते दुख

ए श्री गुरु ग्रंथ साहब के अंदर सारंग महला पंजवा ते पड़ताल करके लिखी है। ए बड़ी पुरातन पड़ताल है जो रागी सीना बसीना गांधी चले आ रहे ने। इस दे अंदर चार ताल एक ताला ते रूपक तीन ताल और फिर सुलफाक है। पुराने वक्तां च एक ताला ते चार ताल ते रूपक विच गांधी सी, इस विच एक सुलफाक दी लै यानी मैं और बधा दीती है। तो हुण इहदा रूप इस तरह बनेगा।

मैं बंदा बेखरीद सच्चा मेरा मैं बंदा बेखरीद सच्चा मेरा जो पिंड सतसा सब कुछ है तेरा माने ने माने तू तने तेरा परवासा बिन साचे अंतिक है तो जानू काचा।

तो तुम ते लेना, तुम मेरा गहना, जो तू दे सोई सुख सेना। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा

तेरा खेल अखाड़ा जियो। तुर बिंदु जा और न कोई, सब तेरा खेल अखाड़ा जियो। क्या कहिए किस आस सुनाइए, जो कहना सब सब्जी पास, सब किता तेरा वरते, सदा सदा तेरी आस। जिदे वड्याई ता तेरी वड्याई,

कृपा प्रीतम प्रभु अपने नाम जपो हरन जल को प्रभु अपने का तान जन को प्रभु अपने का तान जो तू

मैं दूजी नहीं ठार जिस पे हम जाएंगे पर तुम ते लेना तू मेरा देना जो तू दे सोई सुख पैना जो तू दे सोई सुख पैना हर आपे हुए कृपाल आप ही लाएंगे।

रानी वाला पलंग खाली है। थोड़ा समा राजे ने उड़ीक की थी, पर जिस वेले राणी नु राजे ने नहीं तकिया, तां भाई साहब जी लिखदे ने राजे दे मन च बड़ी है। अद्धी रात दा समय राणी किधर चली, राजा उठिया, महल दे अंदर राणी नु लभण लग गए, सारे कमरे वेखे, पर राणी दिस ना आवी, मन विच वरत गई है। तो प्यारी साध संगत, राजे दे मन विच राणी दे मतलब चंगे ख्याल भी आउन लगे, मंदे भी आउन लगे। राणी दा मेरे नाल प्यार तां बड़ा है, पर अधी राती राणी दा महल विचों गैर हाजिर होना, ए तां मैनूं धोखा दिंदी। इन्हां सोचां ते दलीलां राजा अपने पलंग ते बैठा लेट गया, नींद आ गई। दिन चढ़िया, जो राजे ने अखां खोलियां की तकिया, राणी अपने पलंग ते लेटी हुई। राजे ने आवाज दित्ती, राणीए उठ। राणी उठी, राजन हुक्म करो। राजे ने पहला सवाल कीता राणी ते, के राणी सच दस तू राती किथे गई से। अधी रात तू गैर हाजिर सी, किथे गई सी। राणी सोचण लगी, जे मैं सच दसदी हां तां जिथे मैं रोज जांदी हां, हो सकदा है राजा रुकावट पा दे। तो राणी रोज किथे जांदी सी? आई साहब जी लिखदे, साध संगत मिल गाम दे, कराती जाए सुने गुरु। रोज सत्संग भी जांदी, महापुरुषां दी संगत रात नूं जांदी सी, रोज डेली नितनेम बनिया होया सी। चाहे मीं होवे चाहे हनेरी, कैसा भी वैदर क्यों ना होवे, राणी तारा रोज नितनेम नाल जांदी सी। सोचिया जी सच बोलदी है तां हो सकदा है राजा सत्संग तों रोक देवे, पर मेरे ते प्राणा दा आधार है सत्संग, मेरे जीवन दा निशाना है गुरु दी बाणी। रोटी मिले चाहे ना मिले, पर मैं सत्संग तो बगैर नहीं रह सकता। ए प्यार दी निशानी है, ए प्यार है। राणी सोच, राजे ने फिर किया, राणी बोल तू राते किथे गई से? जे झूठ बोलदी हां तां पति परमेश्वर है, स्त्री वास्ते दुनियादारी दा सब तू वड्डा रिश्ता पति है। जे सच बोलदी हां तां सत्संग तू विछड़दी। पर राणी ने सोचिया, मेरा जीवन सत्संग है, जिस तरह मच्छी पानी तो बगैर नहीं रह सकती, सत्संगी सत्संग तो बगैर नहीं रह सकता।

जो आज सत्संग विच आनंद आया है ओ राज गद्दी ते बह के भी दी जो सुख प्रभ गोविंद की सेवा सो सुख राज ना लई फिर प्यारी सत्संग राड़े राणी दे उद्दम नाल फिर राजा सत्संगी बन गया स्त्री नु वाहिगुरु ने बड़ा बल दिता कई तैन कहते अबला है पर मैं ता कहना आदमी नालो स्त्री ज्यादा ताकत ज्यादा बल है तुसी तक लो ना स्त्री दो काराबाद कर दी स्त्री जो है ए दो कर अपने पिता दा घर भी आबाद कर दी है ते अपने सहुरिया दा घर आदमी इको घर ही आबाद करता है अगो श्री वाहिगुरु ए विचार दी बात है फिर एदे अंदर बल ज्यादा होया ना ताई बाबे ने स्त्री नु बड़ा मान बख्शे स्त्री दे हाथ विच सब कुछ है ए पति नु जैसा चाहे बना सकदी एदे अंदर ताकत पर थोड़ा जिहा तहमल चाहिदा थोड़ी जी विचार चाहिदी है थोड़ा जिहा सत्कार चाहिदा है तलखी विच नहीं आना चाहिदा जे पति गलती करदा प्यार नाल समझाना है समझदे समझदे तां पशु ही समझ जांदे ना आखो श्री वाहिगुरु सुनदे सुनदे इंसान है तो मेरे कहण दा मकसद स्त्री दे अंदर वाहिगुरु ने बड़ा बल रखे तक लो राणी तारा ने अपने सत्संग दे शक्ति दे नाल राजे हरिश्चंद्र नू सत्संगी बनाया सत्संगी नहीं बनाया राजे नू धर्मी बना राजा हरिश्चंद्र बड़ा धर्मी राजा है ए वस्तु कितों मिली तेरी सात संगत ए सत्संग विचो मिली नाम विचो मिली तो आओ प्यारी सात संगत आप भी धन हो जो ओ सत्संग विच आप सारे जुड़े हो अज मैं तो यह समझदा भी सारा दिन ही तुसी सत्संग की अमृत वेले तो लै गए अज सारा दिन नहीं वह ए है गुरु दी बख्शिश ते तुहाडा प्यार जिस प्यार दे बूटे नू मालिक ने मेरा दे फल लाए अमृत वेले भी कीर्तन गुरुद्वारे भी कीर्तन ते इधर सार तारा सिंह जी बच्ची जी तो सारे परिवार नू बाबा जी ने प्रेरिया भी घर सत्संग होना चाहिदा कीर्तन हो जाए बड़ा महत्व है जिस घर विच गंदे जरासीम हो जाए ना ज्यादा तो बीमारी पैण दा खतरा हो जाता फिर असि की करदे आ डीडीटी छिड़कदे आ तां जो जरासीम मर जांदे बीमारी तो बच जांदे आ ते जिस घर विच दुख कलेश आ जाण बाबा जी बचन करदे सन उत्थे कीर्तन होया खो श्री वाहिगुरु बाणी दा अमृत छिड़को नाम रूपी अमृत छिड़कोगे तां फिर की होवेगा नस वजो किल विखो करता इथे गुरु आ जा तो इना बच्चिया ने बड़ा उद्यम किया बड़ी गुरु दी मेहर यंग हन दोवे पर मैं ता कहांगा जवानी सफल नहीं तो जवानी मस्तानी होंगी जवानी एक ऐसा मोड़ है चंगे पासे ता तुरना ही नहीं ना चंगी गल ता करनी ही नहीं ना किसे गुरुमुख ने लिखिया भी एक जवानी दूजा धन पले फिर साई दी मेहर होवे तां सीधा चले नहीं तां डिंगा ही डिंगा तुरदा जांदा है तो ओ नौजवान बच्चे जो रोज आके गुरुद्वार जुड़दे हन ते इना बच्चिया ने उद्यम कीता है इना दा उद्यम सफल सत्संग कराया है गुरु दी बख्शिश प्राप्त कीती है फिर इना दे उद्यम नाल आपां सारे गुरु नाल जुड़े हां ए भी वड्डा पुण बाबा जी वचन करदे सन किसे नू गुरु नाल जोड़ देना इस तों वड्डा पुन कोई नहीं है किसे नू तोड़ देना इस तों वड्डा पाप कोई नहीं तो इस परिवार ने जो कालना काली है तो गुरु बाबा बख्शिश करे आपा अरदास करनी है इना बच्चिया दे सिर ते गुरु सदा मेहर प्रयात राज जोग भक्ति शक्ति सारिया दाता गुरु बख्शे इना दे उद्यम नाल आपा जुड़े हां सानू भी गुरु आप दे चरणा नाल जोड़ी रखे ते नाम बाणी दी दात ते कीर्तन दी दात
ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਹਾਨ ਉੱਚਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗ ਸੰਗ, ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਉ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਤੋ ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧਾਰਨਾ ਫਿਰ ਪੜ ਲਈਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਾਮ ਦੇ, ਰਾਤੀ ਜਾਏ ਸੁਣੇ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਰਾਤੀ ਜਾਏ ਸੁਣੇ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਰਾਣੀ ਤਾਰਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਸੀ।

Anand Sauda Park करके कीर्तन की समाप्ति अरदास होगी हुक्मनामा कड़ा प्रसाद की देख बच्चिया वालों गुरमुख परिवार वालों जो सेवा है वो भी प्रवान करनी तो आओ हम अनंत साहब का पाठ सारे

जन्म कर्म मल उतरे सच्चे के गुणगा जन्म कर्म मल उतरे सच्चे के गुणगा गुण गावत ते उतर समय सच्चे के गुणगा गुण गावत तेरी उतर समैल दिल सजाए हो मैं दुख है जन्म कर्म

राग भीम पलासी, दो राग ए आपस विच बहुत मिलदे ने, धनासरी ते भीम पलासी इको ही सुरा ने इन्हां दियां। सिर्फ केड़ी सुर ते ठहरना है भीम पलासी विच ते धनासरी विच केड़ी

सावा नित खड़ी मुझो बनबाली राम राजी तार गुर हर मार जाली मेरे मंत्र नाम धार है खूने जाली जन्ना ने सदगुर मेल हर हर मिलिया बनवाली सुख मैला श्री पद चार बसे तेज पवित्र

सब्दं ज्ञान सब्दं वेद सब्दं ब्राह्मणे खत्री सब्दं सूर सब्दं शूद्र सब्दं प्राकृते सर्व सब्दं एक सब्दं जे को जाने भे नानक तंका दास है सोई निरंजन दे एक।

चने नक दरियाओ पैर जगन कटे बेकार पैर धरती जमी पार पैर चिंतरे सिर पार पैर राजा तक द्वार पैर सुने पैर चन को परोड़ी चंदनंद पैर सिंधु सुनार पैर जाडाने आकाश पैर जोत मामल सूर पैर जावे जावे मोर सजा पौड़ी कैसे ले नानक ने पौ निरंकार सचे मला पहला नानक ने पौ निरंकार वो कितने रामरवाल कितने कन कहानियां कितने भेद विचार।

विकार जल थलिया मुनिया नो आकार आकार जे आखे से तुहे जाने तिन में तेरी साथ नान पत्ता मुक्सरान सचना मधार सदानंद रहे दिला तिगुण मंत्र अपाचार महला पहला।

मेरा तन गुरु नानक पातशाह है, कलयुगी जीवन के उद्धार करने वास्ते जा रहे सोलह कला संपूर्ण चलिया अनंत कला हो ठाकुर चढ़े

अरे तू वड्डा गुरबा क्यों वड्डा है? बात प्यारी साध संगत, मेरे धन गुरु नानक पातशाह के अंदर बहुत ही गरीबी निम्रता, दुनिया केड़ी चीज का पूजन है, किसी जात का, किसी पात का, किसी पेख का पूजन है, नहीं निम्रता का पूजन। गुरु नानक पातशाह ने कितने नहीं किया कि मैं रब हां, मैं गुरु हां। गुरु नानक पातशाह तो अपने आप नानक विचारा पिया, नानक गरीब पिया कहता है, नानक सग पिया कहता। जिथे बहुत ही निम्रता उथे मालिक भी बख्श की जाए। इस वास्ते गुरु नानक होता नीवी थां ते पानी अपने आप आ जाए, आपस को जो जाने नीचा सौ गरिए। हजरत ईसा ने किया है ईसाइया जे किसी ने रब न मिलना है तो पहले मैनू मिले, मैं रब का दरवाजा। हजरत ईसा ने मैं रब का दरवाजा अपने आप न रब का गेट के बाइबल च लिख के। हजरत मोहम्मद अपने आप न पैगंबर कह के ते कहना मेरी उम्मत मेरिया भेड़ा। पर गुरु नानक ने कितने नहीं किया कि मैं गुरु, तेरा तन गुरु नानक पातशाह फिर की करता है जे कोई विछड़िया साई तू मिल जाता, टुटा होया मिलता है इंसान, तो साहब जी नु प्यार नाल कह मेरा आ भाई तेन वाहगुरु नाल जोड़ दी। वाहगुरु अज भी जोड़न वास्ते मरदाने नु कह बरदानिया कहो मेरा निरंकार एदा भी पहला। मरदाने ने माड़ा जिहा मूह बना के कहा वो घोड़े ते जाण वाले घोड़सवार मेरा तो चित नहीं करदा पर की करा बाबा मुड़ मुड़ पिया कहिंदा है वो जाने तेरा भी पहला। तो इधर घोड़े नु पजाई जांदा निरंकार दी ने घोड़े ने ठुड्डा लिया, घोड़ा डिग पिया, डिगदियां घोड़े दे प्राण निकल, इहनू भी चोट लगी, उठे बड़ा घाबरे है एक की होया, चंगा भला घोड़ा सी डिगदियां ही मर गए, हुण की करां। फिर इसने की कीता मोए घोड़े तो काठी ला के सिर ते रख, इहदा नाम सी करोड़िया सेठ, करोड़ोंपति। माया दे कोल बड़ी सी पर शूम बड़ा, शूम दी अवस्था किसी ने बयान कीती है, किरपन पूछे शूम से तुम क्यों भया हैरान। शूम नू किसी ने पूछया भी हैरान क्यों है अज, जां कुछ तेरा धन गया जां कुछ किया दान। शूम कहन लगा नहीं ना कुछ मेरा धन गया ना मैं किया दान, पर एक दान करे देर वेख के निकल गया मेरे प्राण। आखो सही बात, गुरुद्वारे वास्ते उगराई भी होती सी, मैं चला गया कुछ $500 रुपया देवे कोई हजार। चूप कह लगा मैं वेख वेख ही जा रहा। आप न दे चुल्लू भर पानी तह मिले जे गंगा, ऐसे भी इंसान तुम दुनिया चल। आप चंगाई पले नहीं बनते, चंगे काम करने वाले के नुकता ची नहीं करते। करोड़ी वाली शूम काठी सिर ते चुक ली ते वापस मुड़ गए। मरदाने ने दूरों वेखिया मरदाना उठ के खड़ा। हजूर कहन लगे मरदाने की गल है, काला पै गए पातशाह वेखो जिन्हें मैनू ठुडा मारिया सी ते तुहानू कुराइया कहा सी, आ रहे है पता नहीं घोड़ा किधर गया काठी सिर ते चुकी आऊं। अदू कह लगे मरदाने आउण दे, मरदाने ने कहा महाराज अगे मैं तुहाडा हुक्म मनी ते हुण तुसी मेरी बेनती मनो। मरदाने कहो की कहना है? मरदाने ने कहा महाराज ए है कला ते आपा सुख नाल हां तिन, जे तुसी ते भाई बाला दियां कदे बाहां फड़ लो ना
ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਬਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਠੋਕਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਬਦਲਾ ਹੀ ਲੈ ਲਵਾਂ ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਉਹ ਮਰਦਾਨੇ ਰਬਾਬ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਰਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੀਰ ਬਣ ਮਰਦਾਨੇ ਮਾਰ ਕੋਈ ਤੀਰ ਅਣੀ ਆਲਾ ਆ ਗਿਆ ਪੰਛੀ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਤੀਰ ਖਤਾ ਕਰ ਜਾ, ਆਪ ਬਖਸ਼ ਸੱਚ। ਮਰਦਾਨੇ ਆ ਫਿਰ ਰਬਾਬ ਚ, ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਰਬਾਬ ਚੁੱਕੀ, ਰਬਾਬ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀਆਂ ਕੋਮਲ ਕੋਮਲ ਉਂਗਲਾਂ ਚਲੀਆਂ, ਕੋਈ ਇਲਾਹੀ ਨਾਮ ਚਲੀਏ। ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਗਲਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਕਰੋੜੀਆਂ ਨੇੜੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਮੁਖਾਤਮ ਹੋ ਕੇ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਕੀ ਹੈ।

गर्व न कीजे नानका मत सिर आवे करोड़िया तो केड़ी चीज का माण कर जवानी रे जवानी सदा नहीं रही आउंदी है चली जाए झूठा हकूमत का माण कर दे इस संसार च वड़े वड़े राजे महाराजे आए जिन्हों का नामो निशान नहीं है माया का माण करना यह भी झूठा माया ये तो चलता पानी यह माण भी धर्मकार ने तेन मनुष्य जन्म दिता चंगे काम कर ले हौमे हंकार फिर रहे हैं याद रख एक दिन पछता है साहबां का पवित्र पावन उपदेश इस वेले करोड़िए ने पत्थर वर्गा मन पानी काठी सिर तो रख दिती दूजी छिन विच मेरे धन गुरु नानक पातशाह के चरणा ते रोज लग पातशाह मेरे बख्श लो मैं पापी मेरे कोलो भूल हो गए अपने चेहरे के दाग जेड़े दिखते जे शीशे को जाइए शीशे को ना जाइए तो पता ही नहीं लगता इसे तरह अपने कीते कर्म जेड़े हैं उन्हों का पता ता लगता है जे किसी महापुरुष के दर्शन हो जाए महापुरुषों का जीवन साफ शीशा हो अज धन गुरु नानक पातशाह जी धर्मकारी जोत बाबे के दर्शन करके करोड़िया रो रही घुबा मार के रोई जाता कहता है पातशाह मेरे बख्श अरदास कर आओ आप भी करिए किस तरह करोड़िया नाले रोंदा है ते नाले पड़ता पहला सेवक बोलेगा पिछे सारी समझ

रोड़िया से रो रो के मेरे धन गुरु नानक पातशाह ने चरणा रुतो पातशाह बस अदूर कह लगे मरदाने बख्शीए मरदाने ने कहा महाराज अगे मेनू पुछ के बख्श दो ये तो थोड़ा बिरद जो शरण आवे तो तंठ लावे ए बिरद तो हजूर ने अमे दृष्टि तकिया तकिया करोड़िए फिर जप सतनाम संसार रोगी नाम करोड़िए नाम जपेगा नाम जपेगा तेरा मन पुष्ट नाले बाणी पड़े नाले सत्संग भी करिया करते करोड़िए तेनू नरंकार ने माया दिती है दान पुण्य जो माया भी कर सत्य हूं करोड़िया से गल च पला पा के कहना पातशाह एक बेनती मेरी करवाड़ी पातशाह नाल ही मेरा पिंड हूं मेरे घर चलना मैं थोड़ी सेवा थोड़ू प्रसाद छकाव दुध पिलाव अदूर कह लगे क्यों मरवाने चलिए मरदाने ने कहा महाराज भी कोई पुछण वाली गल चलो हूं तो सिख बन गया कौड़िया अदूर कह लगे मरदाने अजे सिख नहीं बने पातशाह किस तरह अदूर कह लगे मरदाने अजे सिखी दिती सिखी की है हुक्म जे हुक्म मनेगा तो फिर ही साडा सिख बन सिखी गल्लां विच नहीं गल्लां दी सिखी कमजोर सिखी का स्वरूप की है उस वाहिगुरु का हुक्म हुक्म मनिए होवे परवान ता खसमे का मह करोड़िए जो तेनू असी उपदेश दिता है ओनू कमा जे तू कमाएगा फिर अरदास करी असी आवांगे तेरे घर प्रसादी छकांगे ते आके वाहिगुरु दे नाम का पवित्र जो अमृत है प्रभाव करना तो चाहिए पातशाह मैं गरीब तेरी बख्शिश कर दिती है हजूर कह लगे करोड़िया बख्शिश मेरे वाहिगुरु की जिस वेले बख्शिश का समा आता है तो जिना संभाल लेता है वह पाकि करोड़िए तो बख्शिश होगी ते भी गुरु की बख्शिश बख्शिश वाला समा बख्शिश तो शरीर ही है बाबा आनंद सिंह जी महाराज वचन करते सन उस वाहिगुरु की सदा ही मेहर है पर उस मेहर को संभाल लेना यह वड्डी आप जिन्हों के भागा बख्श दो वे आके आप कीर्त नहीं जुड़े जिन्हों से गुरु जी कई आने ही नहीं कई नावे पाई जाते पर कई ऐसे प्रेमी भी हैं जिन्होंने किसी कीर्त च नागा नहीं पाया जो कीर्तन च नागा नहीं पाएगा तो गुरु नानक की बख्शिश ही नागा नहीं पाएगा चौड़िया ये मालक की दात यह जोर की चीज नहीं न्यूयॉर्क तू टेलीफोन आया है कदों वापस आ रहे हो छेती आ जाओ किसे पासे उड़ीक है तो कई गुरु प्यारे थोड़े वर्गे माई पाई कीर्तन का अमृत पी तो यह दात गुरु की अपनी है हजूर कह लगी मरदानिया रवाब चुके शब्द की अकेली तक पड़ी मरदाने ने रवाब चुकया बाबे ने सोने गले चो यह शब्द का पी किया और सारे पढ़िए कीर्तन की समाप्ति करिए।

0: परीक्षा से जो गुरु का उपदेश सैबा ने करोड़िए के बख्श और असी भी इस उपदेश को हृदय च बसाइए कमाई करिए जो साडा भी जीवन सफल फिर सानू सदा वास्ते की मिलेगा साडा ये लोग सुखिए और लोग सुहेले हर पल आपे मेले और कैरी सात संगत जिथे होस्टल दिया संत गुरुद्वारा साहब के प्रबंधा के उद्यम नाल दास रोज आप जी के दर्शन करता है ते आप शब्द द्वारा गुरु नाल तो अज गुरु दरोवर साहेब अमरीकन सिंह ये गुरु प्यारा जत्था ये भी इतने ये भी साढ़े वीर अनुभाई गुरु नानक पिता है एक पिता एक उसके पारक तू मेरा गुरु जो गुरु नानक दा सिख गुरु की मर्यादा विच रहेगा भाई ओदे कोई विथ नहीं है सारे बापू के बच्चे हैं तो गुरु प्यारे भी आए हैं तो शब्द एक शब्द की हाजरी वो लगवाएंगे उस तो पर कीर्तन की समाप्ति अमृतवेले का प्रोग्राम भी है कल शाम जिस तरह रूटीन कह दीजिए उसी तरह कीर्तन सन गुरु नानक पातशाह आप जी भी महान महान बख्शिश द्वारा बरखुरदार गुरमुख प्यारे गुरसिख आप जी ने बख्शे खजाने विचों कीर्तन की भेद शब्द आदर करते डालर अरदास कराते मेरे अंतर जाने गुरु नानक जी आप अपने सिखा बच्चियों सुखी जीवन सदाचार दिया तला बख्शो आओ फतेह बुलाओ प्यार
1: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।